हाँ, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो एक रोशन अंगारा उसके पीछे लपकता है, और जमीन को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ बनाकर रख दिए और उसमें हर एक चीज अंदाजे से उगाई, और हमने तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जिनको तुम रोजी नहीं देते इसमें माश के सामान पैदा किए, और हमारे यहाँ हर चीज के खजाने हैं और हम उसको बमिकदार मुनासिब उतारते रहते हैं।

और हम हवाएं चलाते हैं जो पानी से भरी हुई होती हैं, सो हम आसमान से मेह बरसाते हैं, फिर हम तुमको उसका पानी पिलाते हैं और तुम तो उसका खजाना नहीं रखते। और यकीनन हम ही हयात बख्शते और हम ही मौत देते हैं और हम ही सबके वारिस होंगे। और जो लोग तुम में पहले गुजर चुके हैं हमको मालूम है, और जो पीछे आने वाले हैं वो भी हमको मालूम है। और तुम्हारा परवरदिगार कयामत के दिन उन सबको जमा करेगा, वो बड़ा दाना है, खबरदार है। और हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। और वो वक्त काबिले जिक्र है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया था कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से बशर बनाने वाला हूं।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो ले।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: AM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
5: तबाह कयो कार्रवाई दौरान 25 दहशतगर्द मारजी वया। दहशतगर्दन जे मरकजन में मौजूद वडे मकदार में हथियार ए गोला पुण तबाह थी वया आहिनि। सिक्योरिटी अख़्तियारनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान हमेशा खिते में अमन ऐं इस्तेहकाम लाइ कोशिशूं कयूं आहिनि, पर शहरनि जे सिक्योरिटीअ ते को बि समझौतो न कयो वेंदो। दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन पूरी शिदत सां जारी रहंदो।

मुल्क में गैरकानूनी तौर तरछल अफगान शहरन खिलाफ़ बीहर क्रैकडाउन शुरू। अफगान शहरन के फौरी तौर गिरफ़्तार करण जो हुक्म। घरू वज़ारत नोटिफिकेशन जारी कर छो। घरू वज़ारत मुल्क में बिना वीज़ा या गैरकानूनी तरछल रहंदड़ अफगान शहरन के फौरी तौर गिरफ़्तार ए खिन वापस मोकलण बाबत आम नोटिफिकेशन जारी कर छो। नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर अफगान शहरन खिलाफ़ कार्रवाई लाइ सख्त हिदायतूं जारी कयूं आहिनि।

0: ॼाणायल मुदे ताईं मुल्तवी। वफ़ाक खे ॾिनल पैसा बचाए रखिया हुआ। आइन जे आर्टिकल 164 तहत वफ़ाक खे दिफ़ा लाइ 260 अरब रुपया ॾिना। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त NFCA मां कटौतीअ वारी ॻाल्हि पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी रद्द कई। ॿिया सूबा राज़ी हुआ। वफ़ाक 2095 अरब रुपया ॾियण जो वाइदो कयो। जून में 176 अरब रुपया मिलणा आहिनि। बजट में गुल प्लाज़ा साने जे मुतासिरनि लाइ 8 अरब रुपया सब्सिडी रखी आहे। साने जी रिपोर्ट जल्द अवाम आॾो आणींदासीं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.1।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ। आवाज की डोर से बंधा हुआ।
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

मुंहिंजा हाल करण जो मक़सदु नतीजो आहे ऐं जीअं की माण्हू ऐं शाम जो बदलाए छॾनि था ज़िंदगी में कॾहिं कामयाबी तकलीफ़ुनि ऐं हासिल कजे थी सा जटादार हूंदी आहे ऐं उहा माण्हूअ जे शौर खे हर हिमत कॾहिं असां चाहियूं था पुराणियूं ग़लतियूं रखणु घुरिजनि ऐं हमेशह पंहिंजी ग़लतियुनि खे जेके हाल हाज़ुर आहिनि उन्हनि खे बि यादि रखणु घुरिजे पीठ ज़िंदगी जो क़दम ज़रूरु

साइमन जा पीओ उहा शफ़क़त आहे जेका दुनिया जे कंहिं बि बाज़ार जे दुकान तां भले रक़म वॾी हुजे या नंढी हुजे ऐं नाहे मिली सघंदी। पीओ जंहिंखे बाबा बि सॾींदा आहियूं त कॾहिं अबो बि सॾींदा आहियूं, संदसि प्यार जो काथो करे ई नथो सघिजे। नंढपण में शहर ॾे वठी घुमाइण जा रस्ता गस सेखारण, तालीम जे ज़ेवर सां सींगारण लाइ स्कूल में दाख़िलो करण ऐं औलाद जो हर अंगल अखियुनि ते रखी पूरी करण जी कोशिश करण, वरी पाण खे अफ़सोस अहिड़ी औलाद ते जो शादी करण खां बाद में हू पंहिंजे बाबा खे ऐं पंहिंजे घर मां खेसि पंहिंजो तकलीफ़ ॾियनि था ऐं कढी छॾण वारो अमल तमामु बेकार आहे। अहिड़ी औलाद लाइ ईअं बि चई सघिजे थो त रब रुसे मत खसे ऐं हणे कोन हथियार, ॾिसी उहो पार जाॾे जोखो जीअ जो। त हक़ीक़त आहे अलाह साईं सभिनी खे हिदायत ॾींदो त पीउ उहा हस्ती आहे जंहिंजे असां पंहिंजी महिनत जो को बि हिकिड़ो ॾींहं जो बि थोरो कोन था लाहे सघूं, ऐं वालदेन उहा शइ आहे जंहिंखे असांजे लाइ इहो बि हुकुम आहे। अलाह ताला जो क़ुरान में फरमाए थो त माना उन खे तव्हां उफ बि न चओ। वालदेन उहा शइ आहे तव्हां असां उन जे अबे अमण जे हिकड़ी राति जाॻण जो थोरो बि कोन था लाहे सघूं ऐं उनखे असां पंहिंजो दुआऊं ॾेई सघूं था। ऐं अबो अबो आहे ऐं अमड़ अमड़ आहे, इन जो ख़्यालु कयो, उन्हनि जो वधि में वधि एतिराम कयो।

साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी ऐं सारी आहे। तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु यारहें वॻे ताईं ऐं कॾहिं बि न वञिजो असां गॾु हुजो। हिन वक़्तु हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।

0: इट्स टाइम टू
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो बुधंदा रहो
2: इट्स 9:30 AM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: माइनस हो सारी टेंशंस जब हो आपके पास Zong 4G की प्लस ऑफर लेट्स गेट डिजिटल विद Zong 4G
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो
1: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

जी समय रोशन सुबह जा नाला खणंदासीं ॾहें रोशन सुबह जे नेटवर्क आहे ॻोठ मोहरन खां ज़मीर हुसैन सोलंकी मुख़्तार अली सोलंकी ज़हीर कंगन गुलाम रसूल आहिनि मोहसिन अकबर फादर अकबर अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो ऐं नारा स्टाप सखर लग सब्जी मंडी खां एजाज़ अली जूणे जो मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जूणे जो यार

करोड़ा कॉलोनी लाड़काने खां फौजी इरशाद अली महेसर ऐं दोस्त आहिनि मीरपुर ख़ासि खां अज़ीज़ सोलंगी भुट्टो सोलंगी ॿारनि जी वॾी महिरबानी ऐं लोहर कॉलोनी लाड़काने खां इमदाद अली दायो दिलबर सैफला ऐं जवाद दायो ऐं ॻोठ सचिरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां हाजी सोराब अली मंगरियो फरहान अली मंगरियो ऐं नज़र मोहम्मद मंगरियो ऐं क़ुर्बान अली ख़ासि कली इनायत अली ख़ासि कली झंडो मरी खां ख़ालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां ऐं मीर यासमीन मलिक ऐं भाग्यो ख़ान शर आज़मदीन शर आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली भुगती लाड़काणे खां अब्दुल गनी अबड़ो शाहिद लतीफ़ ऐं जिनसार ओढो जजलाज बेबी अबीहा जुणे जो ॻोठ ठुल जुणे खां सभिनी दोस्तनि जी नूरजहान जे आवाज़ में सभिनी दोस्तनि जे नाम।

जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी ऐं सारी आहे। तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं। असां वरी हलंदासीं पंहिंजो न्यूज़ कमर्शियल जी ब्रेक तरफ़ वापसि ईंदासीं। कॾहिं बि नवां नाला शेयर करे सघो था ऐं SMS 0333228।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से।
2: अपना शहर, अपना घर, मटियारी, और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
3: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
4: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
5: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
6: Commander Urf Zabil bhi shamil ho. Aap Al Haq je silsile mein Saradi ilaqan Paktika aur Kunnad mein trin aam markazan ke tabah kayo hoyo. Karwai duran 25 dehshatgard marji vaya. दहशतगर्दनि जे मर्कज़नि में मौजूद वॾे मक़दार में हथियार ऐं गोला पुण तबाह थी विया आहिनि। सिक्योरिटी इख़्तियारनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान हमेशह खिते में अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ कोशिशूं कयूं आहिनि, पर शहरनि जे सिक्योरिटीअ ते को बि समझौतो न कयो वेंदो। दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन पूरी शिदत सां जारी रहंदो।

0: Cuma cemaate bakarsanız arayı anlıyorum. Kalp polisi bulundum. Zabur kasa da dedim. Masal o zaman öyle o bir mor kasam. Ya Abdülhadi, ya Şedi Ağa Canan mı mıydı? Ya Şedi Ağa Umri Faruk mı mıydı? Abdülhadi, mağın bir müstesvir var kodum ülkeler. Canan kuşağı Ağa yok var. Ben oğuzum. Ağa Umri Faruk ben mi can? O zaman cüder. Ben de bu vazik edin. Diyan Abdülhadi'nin de bana bir Pakistan abi. Baca o. Ağa Tamir Ante o. Ağa Umri Halimiz Duran o da şeyini de güzel de utakun. Hadi Abdülhadi Ravani o Vazilistan. Madetler.
1: कराचीअ में रेंजर्स जे कैंप ते हमिलो कंदड़ कलादम जमायत अल अहरार जे गिरफ़्तार ज़ख़्मी दहशतगर्द जा छिरकाईंदड़ इनकशाफ़। रेंजर जे कैंप ते हमले में मुलविस दहशतगर्द उस्मान एतिराफ़ी बयान में चयो आहे त हू 7 ॾींहं अॻु अफ़ग़ानिस्तान जे शहर जलालाबाद खां बाजोड़ वासी शख़्स अब्दुल हादी वटि आयो। खेन हिकु ज़हर तमीर इमारत में तरसायो वियो, जिते ॿिया मज़दूर बि तरसियल हुया। दहशतगर्द अब्दुल हादी हमले लाइ खेन हथियार ॾिना। मूंसां टे साथी हुआ, जिन में अब्दुल हादी, जाना ऐं उमर फारूक शामिल हुआ। मूंसां गॾु आयल दहशतगर्द अब्दुल हादी मारिजी चुको आहे। दहशतगर्द जाना पाकिस्तान रेंजर्स कैंप ते बम उछलायो, भॼी रहियो होसि त मूंखे गोली लॻी ऐं किरी पयुसि। असां सभिनी खे अफ़ग़ानिस्तान में तरबियत ॾिनी वई हुई। असां सभु आपघाती जैकेट पाण तयार कंदा आहियूं। कराची अचण खां पहिरियां असां लाइ अफ़ग़ानिस्तान मां ई समूरो इंतज़ाम थी वियो हो।

मुल्क में गैर कानूनी तौर तरछल अफगान शहरों खिलाफ बीहर क्रैकडाउन शुरू। अफगान शहरों के फौरी तौर गिरफ्तार करने जो हुक्म। घरू वजारत नोटिफिकेशन जारी कर छो। घरू वजारत मुल्क में बिना वीजा या गैर कानूनी तरछल रहंदड़ अफगान शहरों के फौरी तौर गिरफ्तार ए खेन वापस मोकलन बाबत आम नोटिफिकेशन जारी कर छो। नोटिफिकेशन मूजिब चैनी सूबन के चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर अफगान शहरों खिलाफ कार्रवाई लाए सख्त हिदायत जारी कई। अमरीकी खबरू इदारे जब ईरान ए अमरीका जहा नुमाइंदा एक बे हमला रोकने दुआ में मुलाकात थी।

खे पाकिस्तान जे अमन लाइ कोशिशुनि बाबति आगाही बि ॾिनी। जे माली साल 2026-27 लाइ 3,562 अरब रुपियनि जी बजट अक्सरियत राय सां मंज़ूर। 164 अरब रुपियनि जूं ज़मीनी ग्रांट्स ऐं फिनांस बिल बि मंज़ूर। दुर्जूं कटौतियूं 16 बजट जी मंज़ूरीअ खां पोइ सिंध उहिदे ताईं मुलतवी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जो हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
1: मन जो मुरकण सोलो ए आसान कोने मुरकण असा इंसान जे किरदार जी अजमत जो एकड़ो चिटो पिटो दलील है तव्हां खे जेको कुझु बि हासिल करणो हुजे उहो मुस्कुराहट जी ताक़त सां हासिल करियो ऐं न कि तलवार जी ताक़त सां। मुस्कुराहट यकीन ॾियारे थी त मुस्कुराईंदड़ जी दिलि कीने खां पाक हूंदी आहे। माण्हू मुरकंदे मुरकंदे बिना सींगार जे बि ॾाढा सुंदर मुस्कुराहट जी सींगार जा वरी हथियार बि अहिड़ा ताक़तवर थींदा आहिनि जो हर मोहिजी आहे। इहा आहे असांजी चोट खाइण खां बाद में मुस्कुराहट ऐं सींगार में को

गुलनि जी मौसम बि आहे। गुल तमामु घणा सुठा ऐं सुहिणा थींदा आहिनि। जंहिं में गुलाब जे जा गुल उन में मुख़्तलिफ़ रंग हूंदा आहिनि ऐं राबेल जा गुल, सो चमेली जा गुल, गुल त तमामु घणा हूंदा आहिनि पर ख़ुशबू वरी कंहिं कंहिं गुलनि में हूंदी आहे ऐं ख़ुशबू सभिनी गुलनि में न हूंदी आहे, पर के रंग हूंदा आहिनि त सभु हिकु जहिड़ा रंग न हूंदा आहिनि। के गुलनि जा या ॿियनि गुलनि जा वणंदड़ हूंदा आहिनि, तमामु सुहिणा। जीअं ॾिसो त रंग त वरी पोपड़नि में बि हूंदा आहिनि ऐं अलाह साईं जी तमामु जेके सुहिणियूं शयूं हूंदियूं आहिनि ईंदड़ हूंदियूं आहिनि, इहे असांजे मालिक आहे ऐं हुनजी ख़लकत ऐं पंहिंजो हिकिड़ो नज़ारो जेको आहे सुहिणो वणंदड़ लॻंदो आहे। तव्हां सुबुह जो सिज उभरण जो तव्हां नज़ारो ॾिसंदव त तव्हांखे तमामु वणंदड़ हूंदो ऐं सुबुह जे थधे पहर में तव्हांखे ऐं बाग़नि जी जेका सूंह हूंदी आहे। ॾिसो त हर मौसम में पंहिंजा पंहिंजा फल फ्रूट हूंदा आहिनि। जीअं ॾिसो त पंहिंजो हिन वक़्तु तमामु हिकिड़ी शीती सीज़न चऊं ऐं औज चऊं हिकिड़ो विच चऊं त अंबनि जो आहे। पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में जेका अंबनि जी सीज़न आहे तमामु सुहिणी आहे। अंबनि जा रंग ॾिसो कहिड़ा तमामु सुहिणा आहिनि ऐं अंबनि जो जेको ज़ाइको आहे, ज़ाइको मिठाज आहे, उहो केॾो हिकिड़ो वणंदड़ आहे। उन में केतिरियूं जिन्सूं आहिनि, के उन में अंब नंढा हूंदा आहिनि, के वॾा हूंदा आहिनि। ऐं जेकॾहिं वरी ॾिसो त हिन वक़्तु असांजे मार्केट में खजूर जो जेको फसल आहे उहो जेके असां ॾोका चऊं, ॾंग ॾोका चऊं, खारकूं ऐं ख़ासि करे हिन जेका स्टार्टिंग वारी सीज़न आहे त हिकड़ी ॻाल्हि दिलि ते ईंदी वञे थी त लूणी खारक जेका असां हुनखे हथरादो खारक बि चवंदा आहियूं, उनखे असां तेल में लूण में असां हुनखे थोरो नरम कंदा आहियूं त लूणी खारक ठही पवंदी आहे। उहा खाइण में तमामु हिकड़े मज़ेदार हूंदी आहे, हर माण्हू खाई सघे थो। ऐं डंग बि जेके ॾोका आहिनि उहे मार्केट में उहे बि अची चुका आहिनि ऐं जंहिं इंसान जे लाइ हिकड़ी तमामु फ़ाइदेमंद आहे।

पर मां वरी ॿी गुलनि जी ॻाल्हि कंदुसि, अहिड़ा गुल गुलाब जा जिन असां ॾे मैसेज कयो आहे, असां ॾे फोन कयो आहे, त असांजा नाला हलायो। अहमद नवाज़ कंबर खां भाउ प्रोग्राम ॿुधे पियो, ऐं चनेसर बिहण आज़ाद बिहण मोरे खां, फ़क़ीर महरम जतोई ॻोठु आगा खान जतोई खां, रेहान खान बखर शहर खां मैसेज कयो आहे भाउ जी वॾी महिरबानी। नवीद चन्ना ॻोठु बाग चन्ना घोटकी खां, इक़बाल लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां, दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। असांखे तमामु सुहिणा गुल गुलाब जा इहे ई लॻनि था जिन असां ॾे फोन कई, हुन जी वॾी महिरबानी। ऐं ख़ूबसूरत नगमो अवां दोस्तनि जे नाम।

हा जी असां गुलाब जा गुल महबूब शर ठरी मीरवा खां हुन सां गॾु आहे रिज़वान शर इमरान शर ऐं नंढड़ी असमा ऐं उज़मा शर दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। त समय असां वरी हलंदासीं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं ऐं करे SMS ज़रिए ऐं तव्हां फेसबुक ज़रिए पंहिंजा नाला लिखाए सघो था ऐं असांजी मोबाइल स्टूडियो में आन आहे 03322132888।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी 1.6 सिंध जो आवाज, उधर
1: दारा। एम टेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।

0: जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम,
1: खूबसूरती है जो असल राज। सिर्फ डी बीट्स जदीद माइक्रो बीट्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधो प्या जिए हैदराबाद।
3: ओ पिता जा पिता पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुजो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: सब शाह साईं जो सडल सोरमियों जिन जो हौसलो हिम्मत न विसण जेड़ो आहे ऐं ये जिंदा मिसाल आहिनि ऐं शारन पंहिंजे शायरी में सभिनी सोरमियुनि खे पंहिंजो शायरी में लिखियो आहे ऐं उन जा मिसाल न आहिनि उन में काफ़ी जेके आहिनि उहे इश्क जा मिसाल तमामु घणा हूंदा आहिनि ऐं जेके आम माण्हुनि खे मिसाल ॾिनो वेंदो आहे इहे साफ़त आहिनि ऐं उन में इहे असांखे इश्क जा जेके दास्तान आहिनि उहे असांखे हिकिड़ो सबक ॾियनि था उहे असांखे हिकिड़ो मिसाल ॾींदा आहिनि त हीअ असांजो जेके सिंध जी सकाफ़त रही आहे पर असुलु इश्क जा

सुठी ॻाल्हि ऐं मिठी ॻाल्हि ॻाल्हाइण बि हिकु क़िस्म जो ॿिनि मुस्लमान भाइरनि जे विच में सुलह करण बि वॾी नेकी ऐं सवाब आहे ऐं ॻाल्हाइण सां हर घर ते जा बि अल्लाह ताला बुलंद करे थो सां चङा ई करे थो ऐं जेको बदफ़सील थो ॻाल्हाईंदो आहे उहो अल्लाह ताला खे ॾाढो तमामु घणो गुनहगार आहे। अल्लाह ताला क़ुरान में फरमाए थो त माण्हुनि सां मिठो ॻाल्हायो ऐं ॿियनि खे सताइण वारो माण्हू चवंदा आहिनि त हू समूरियूं रातियूं इबादत करे, पर असांखे घुर्जे त असां नंढनि सां प्यार कयूं ऐं कंहिं सां बि दिलि रंजाईंदड़ असां तकलीफ़ न ॾियूं कंहिंखे, पर इहो ई असां इबादत आहे ऐं हिन में रब

सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबति सिंध हाई कोर्ट जे फैसले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे सीसीए सीएसएस 2024 जे पेपर जो समूरो रिकॉर्ड सील करे पेश करण जो हुकुम ॾिनो हुओ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।

सिंपली मैसेज करने के लिए इसके आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, डैड इज GFM 88 के पेज के ऊपर पोस्ट मिलती है आपको जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल की जा सकती है, तो कॉल कीजिए.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई रे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
4: Hemet Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Hemet Diamond Glow Bleach Cream.
5: Ab aapki khubsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap चमकता निखार ताजगी के साथ। H Beauty पाकिस्तान।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज।

0: once again, आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार है आपका मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप कॉल्स के थ्रू क्योंकि हम अपना अपना अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज सुर लगाओ गाना सुनाओ. और सुर लगाओ गाना सुनाओ मैं आप लोगों की कॉल्स में पिक करने वाली हूँ 03000113488 जिसके ऊपर अगेन और साथ साथ जो हमारी पोस्ट है ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं सॉरी पोस्ट जो हमारी पोस्ट है ना उसके ऊपर आप लोग कॉमेंट्स कर सकते हैं जो ये FM88 के पेज के ऊपर आपको मिल जाती है ईजी सो उसके ऊपर आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं. और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. सो कॉल्स आप लोगों की पिक करना हम स्टार्ट करते हैं. जी फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल चेक करेंगे कॉलर कहां से. हेलो ओके जी मुझे आवाज नहीं आ रही है. हम चेक करेंगे कि ये आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो थोड़ा सा लाउडली बात करें. हेलो ओके जी मजबूरन मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से जिन्होंने कॉल की है वो बोल नहीं रहे हैं. सो नेक्स्ट कॉलर हेलो हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: हेलो
0: जी कौन बात कर रहे हैं कहाँ से. हेलो
1: हेलो
0: हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है. हेलो ओके जी वेरी बैड ऐसे नहीं करना चाहिए था. 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग. नेक्स्ट कॉलर हेलो
2: हेलो
0: वालेकुम अस्सलाम आवाज आ रही है आपको मेरी.
2: हेलो
0: हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है.
2: हेलो
0: हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है.
2: हेलो
0: हेलो
2: आपकी आवाज नहीं आ रही.
0: मेरी आवाज नहीं आ रही ये इश्यू उसको हम चेक करेंगे आवाज क्यों नहीं आ रही. हेलो अब आवाज आ रही है.
2: नहीं नहीं आ रही
0: अभी भी नहीं आ रही. ओहो ये तो गलत बात है ये क्यों नहीं आ रही. आपको मेरी आवाज आ रही है अब. हेलो ओके मेरी आवाज नहीं आ रही. ओके जी एक और ट्राई करेंगे और ये देखेंगे आवाज क्यों नहीं आ रही. हेलो
3: ठीक है
0: आवाज आ रही
3: है.
0: ओके कौन बात कर रही है.
3: अभी तक नहीं
0: पहचाना. मैं पहचानूंगी ना आप बताएंगी तो मैं पहचान जाऊंगी. कौन बात कर रही है सॉरी. दुआ कवल बात करिए. दुआ कवल अब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही. आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है.
3: अच्छा सिस्टम में कोई मसला होगा.
0: अच्छा अच्छा मुझे बताएं कि प्रोग्राम सुन रही है.
3: हाँ
0: गाना सुना. हेलो गाना सुनाएगी. मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है और ये क्यों हो रहा है.

0: ओके जी एक और ट्राई करेंगे. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कौन बात कर रहे हैं कहाँ से? हेलो वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से? मेरी आवाज नहीं आ रही है, लगता है फिर ये कोई इशू है हमारे पास. एक और ट्राई करेंगे जी. हेलो वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? ओके जी मुझे बताएं कि अदा प्रोग्राम सुन रहे हैं, गाना सुनाएंगे?
1: हाँ जी बताएंगे, गाना सुनाएंगे बिल्कुल.
0: सुना दें.
1: दुश्मन कुछ करे चली, दुश्मन कुछ करे चली, कयूं तो जुदायूं दीदार तायूं, दुश्मन कुछ करे चली, दुश्मन कुछ करे चली.
0: ओके okay.

जी जी अदा स्टॉप स्टॉप, अगर सारा आप सुना देंगे तो मैं प्ले क्या करूंगी, मुझे बताएं इसका टाइटल क्या है। ओके चले मैं इसको सर्च करती हूँ जी, थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे? ओके जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाएं।

0: زندہ رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانہ صبح 7:30 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
1: तुम भी पैं ख्वाबन जो घर एक अड़ी जाए थे ठाण चाहो था जिते हो तहफुज जदीद सहूलतू मंजूर थियल सिक्योरिटी
2: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
1: सखर शिकारपुर रोड ते
2: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल सामू
1: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
2: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
1: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
2: रिहायशी प्लॉट 80, 120, 150 गज जा
1: कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज 600 गज
2: इतने तमाम के मिलन थी जदीद सहूलतूं
1: साफ मिठो पानी
2: बिजली गैस
1: 24 कलाक सिक्योरिटी
2: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सबका वडी गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी बेजो आहे
1: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिन्हीं लाइ बेहतरीन मौको बनाए थो
2: अजी पेंजे प्लॉट की बुकिंग करायो
1: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री
2: कॉन्टेक्ट
1: 03009317252
2: and 03132757860 Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar
1: Tamache Mehfooz Mustaqbil aur behtareen investment jo behtareen intikhab khushkhabri khushkhabri amaje baren je behtareen career aur roshan mustaqbil je laaye Sakhar jo mashhoor aur manyal idaro Sirajuddin Institute of Professional Studies Sakhar para nursing aur physiotherapy जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिलाओं जो शानदार ऐलान हाने पैंजे बारन के बनायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, आई 5 साल जा डिप्लोमा MW, ICNA, आई खास गाल स्कॉलरशिप्स पिण मौजूद आहिन जने ते 2 सालन जे कोर्सेज में दाखिला बिल्कुल फ्री आहे सहूलतू आई मनिता असाव स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस एसी क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी हॉस्टल आई पिक एंड ड्रॉप जी सहूलत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर थियल आई पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का मुकमल तस्लीम थियल आहे दाखिला महदूद आहिन तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स Sector 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर फोन नंबर 07156356 42 आई 03008311207
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और सुलगाओ गाना सुनाओ हमारा सेगमेंट है जिसमें आप लोगों की हम लाइव कॉल्स ले रहे हैं 03000.

0: 1188 इसके ऊपर और चेक करते हैं जी नेक्स्ट कॉलर और इस बार चेक करते हैं कि हमारी आवाज चली जाए. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. मैं ठीक हूँ. मेरी आवाज आपको आ रही है?
1: आपकी आवाज बहुत कम आ रही है.
0: मेरी आवाज बहुत कम आ रही है. अच्छा ये चले अब ठीक आ रही है? अब बेहतर है? अब बेहतर आ रही है?
1: आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है.
0: कट कट के आ रही है? आ तो रही है ना. आ रही है वैसे आवाज आ रही है आपको मेरी?
1: नहीं आ रही आती.
0: चले फिर गाना ही सुना दे हमें. हम गाना प्ले करते हैं और ये चेक करते हैं हमारे पास क्या कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है. गाना सुनाएंगे?
1: हेलो
0: हेलो
1: जी
0: गाना सुनाएंगे कोई?
1: जी जी मैं सुन रही हूँ. माशाल्लाह बहुत अच्छा है.
0: अच्छा तो कोई गाना सुनाएंगे?
1: जी
0: चले थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज. और

0: साथ साथ नेक्स्ट कॉलर को पिक करते हैं और चेक करते हैं कि कौन और कहां से हमारे साथ मौजूद है. हेलो
1: हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम.

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: Express PM. This project is brought to you by
2: Bankal Habib. Rishta Bharose Ka.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर
4: KT कारोबारी मरकज गुल प्लाजा के लगल बाहत्तो करार पुलिस चालान प्रोसिक्यूशन वट जमा कराए छो बाबत अदालती बनाए वो तुला ए संदस 11 साल के पुत्र हुज़ैफा के जवाबदार तौर नामजद कर वो गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता नायब सदर अमार इस्माइल बेन के भी केस में नामजद कर वो जांच रिपोर्ट मूजिब गुल प्लाजा में बाह लगण सबब 72 मानू सड़ी फौत थे वक्त त सिंध हुकूमत सर्विस कमीशन बाबत सिंध हाई कोर्ट के फैसले के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सीसी 2024 के पेपर्स जो समूरो रिकॉर्ड सील करे पेश करने जो हुकुम दिनो हो कैरपुर के कच्चे में कोराई बिरादरी की बिंदुन में झेड़ो एक जनो कत्ल ब जख्मी पुलो थाने की हद गोठ कोराई में कोराई बिरादरी की बिंदुन में मामूली गाल झेड़ो थो फायरिंग में रोशन कोराई मार जी वो करावड़ मोहम्मद सिद्दीक कोराई जख्मी थे धुरिन में छिकताण वधी वही सकरण वेझो बड़ी अगू सिंधु दरिया में टिकटॉक ठाहींदे बुडी वियल नौजवान फहीम जुड़े जो लाश थे गोठ दंगवासी नौजवान ठाहींदे दरिया में कोटली भरसा सिंधु अजरो शख्स जो लाश थे अस्पताल मुंतकिल सुजाणप न थी सघी।

0: सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसनि जे नतीजे में हिकु औरत समेत चार ॼणा फौत। कंबट में कौमी शाहराह ते ट्रक जो मोटरसाइकिल खे टकर। नारी फिज़ा ख़ास खे हयाती विञाए वेठी, अलहया ज़ख़्मी थियो। कश्मीर में टायरा टुटण सबबि मज़दा बी एस फीडर में किरी पई, रुगाई फौत। ॿ ॼणा फौत, लाश अस्पताल मुंतकिल। फौतुनि जी सुञाणप न थी सघी। शाहपुर जाकर में घर में दाख़िल थी फुलुट कंदड़ चार औरतूं पकड़िजी पयूं। पुलिस हवाले, न्यू कॉलोनी में चयन औरतुनि मलिक अज़ीज जे घर में घिड़ी पीसन औरत खे यगमाल बणाए वरितो। औरतूं सोना ज़ेवर ऐं रोक रक़म लॻियूं त औरत जी रड़ियुनि ते ॿिए कमरे में सुतल मर्द जाॻी पिया। औरत हवाले कयो वियो, केस दाख़िल। कुंडी में लंघ बंदि करण तां बेंदुरनि में झेड़ो, भील बिरादरी जो एहतजाज। भील बिरादरी कुंडी उमरकोट रोड ते धरणो हुयो ऐं लंघ खुलण जो मुतालबो कयो। मंज़ूराबाद वेझो शहज़ोर गाॾीअ खे बाहि लॻी वई, गाॾी सड़ी रख, ड्राइवर महफ़ूज़ रहियो। खाणोट वटि इंडस हाईवे ते रोड ते कलर जा पटा कढ़ंदड़ शहज़ोर गाॾीअ खे ओचितो बाहि लॻी। बाहि लॻण खां पोइ गाॾीअ जा गैस सिलेंडर बि फाटी पिया। बाहि सबबि शहज़ोर गाॾी मुकमल तौर सड़ी रख थी वई। ऐं यूरोप में गर्मीअ विघे फोतियुनि जो अंगु 1300 खां वधी वियो। डब्ल्यू एच ओ वधीक फोतिकिन जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो। सिहत जे आलमी इदारे डब्ल्यू एच ओ मूजिब यूरोप में गैरमामूली गर्मीअ सबबि फोतिकिन जो अंगु वधी वियो आहे, जंहिं में वधीक धरतीअ ते थींदड़ ख़ितो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: अभी बुधोपिये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता
0: सिंध जो आवाज़।

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक जी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. कॉल्स के सेगमेंट है जी बोलो तो माने, और बोलो तो माने में आप लोग टंग ट्विस्टर कह के

खाएंगे लाल लाल मिर्च शिमला मिर्च, ठीक है, ये कहेंगे हरी मिर्च मिर्च शिमला, और इसको क्या, और आप जीनियस कहलाएंगे, जो बंदा अच्छा और अच्छा अच्छा कहता हो डेफिनेटली मतलब वो विन कर जमीन को. Now, yo, we up in the mix, yo. We got some brand new

0: एक और कॉलर लेते हैं जी, और नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम. दुआ कवल
1: जी,
0: टंग ट्विस्टर सुना भूलेंगी? अच्छा तो मैं बताऊं भूलेंगी?
1: नहीं, मुझे याद ही, बता दूंगा आपको.
0: अच्छा, आपने कहना है लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च.
1: लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च. लाल
0: yes.
1: लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च. लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च. लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च.
0: ओके ओके, वेरी नाइस. अच्छा, दुआ कवल, दुआ कवल मुझे ये बताएं, और कुछ कहेंगी? और कुछ कहेंगी?
1: हाँ, गाना लगता है नहीं मेरा.
0: कौन सा गाना सुनना है आपने?
1: मेरी कॉल लगी तो गाना भी लगेगा.
0: कॉल लगी तो गाना भी लगेगा. चले लगा देते हैं जी. और वैसे मैंने काफी लोगों के गाने प्ले करने थे, वो हमारा कुछ टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से ना ये गाना हम प्ले नहीं कर पाए, लेकिन अब करेंगे. सादगी तो हमारी जरा देखिए. ओके, अभी चलाते हैं जी, चलाते हैं. थोड़ा सा हौसला. थैंक यू, बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.

ओके जी, इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ मूव कर रहे हैं एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. और नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करेंगे ये वाला जो कि अब मैंने कर दिया है.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

से चके प्रदेशन नाम के गलिज में बिल्कुल असली देखूं मैं मेटिकुलसली दम मेरे मेडिसिनल से दम किया मैंने कलम से सच बोला मैंने कसम से गंदे को कैसे बदलते दिखते हैं सबके करते कब से बातें पक्की बातें कच्चे I've had enough of it but I keep going got no option but to keep flowing keep the toxic out of my zone just to keep up me off my throne bitch one thing I need you to know need a friend you can call my phone

आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है हमारा सेगमेंट बोलो तो मानी और 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 0011 साथ साथ मैसेजेस रिचार्ज मैसेजेस के जरिए। तो इकबाल अमीन किए हैं जी, सुनो खान लाशा जी, रुखसार नाइक, अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं जी, अब्दुल रजाक मोहम्मद खान, गुलाब खान लगारी गोट, भाषम खान रिंद से, शेर गाजी खान रिंद हमें सुन रहे हैं, चाचा मंठार रिंद, रिजवान अली रिंद, फैन शहजाद अली रिंद, छोटी जी आपको हमें शो का हमें इंतजार, लाला पाक आपको खुश रखे, और लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च।

0: पाकिस्तान की शान 188 नेटवर्क। ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, धब्बे की मारे जानपन। अब सबको की जिल्द को दे नया निखार, नरमी ताज़ कुदरती चमक, सावली रंगत में पाए साफ निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल, असर हो दुगना। आज ही अपने करिश्मा लुक ब्यूटी क्रीम नाम मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर 9603154 5। बेस्ट लुक ब्यूटी, खूबसूरती आए जो महसूस हो।
1: खुशखबरी, खुशखबरी करियर आए रोशाए सखर जो मनियल इधारो ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ट्रॉपी जे शोबन में नए सेशन लाए दामदार करियर प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम SNGBI 5 साला डीपी ते 2 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHMWIC आई खास गाल स्कॉलरशिप पिण मौजूद है। कोर्सेज में बिल फ्री आए आई मनीता ऐसी क्लासरूम कंप्यूटर लैब पिक एंड ड्रॉप जीपी इधारो सिम जरूर चल आई पाक्री काउंसिल खासम चला है। दाखला मैथरे अगली राफ्तुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स 4907135642008120207। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साला तजुर्बेकार
0: होम्यो डॉक्टर आजान HMP
1: सीनियर प्रोफेसर कॉलेज लाड़काना
0: माहिरे अंग और मसाने की पथरी
1: का बगैर ऑपरेशन इलाज,
0: कमर दर्द, दर्द,
1: हेपेटाइटिस,
0: कमी या ज्यादती,
1: बे औलादी बीमारियों के मन पठान।
0: सुबह 10 बजे तक
1: आपैथिक क्लिनिक
0: चौक सखर,
1: रब्ते के लिए
0: 3262200। पाकिस्तान वादियान की पहचान FM 88 नेटवर्क।

0: ओके जी, वेलकम बैक वन सिक डिजाई है. और मुझे सारे आपको एजी और कॉल्स का और यहाँ से अच्छा वो जो टंग सेगमेंट था उसमें कुछ हम कॉल्स नहीं लिखू सम टेक्निकल. हम अभी आप लोगों की बैक टू बैक मैक्सिमम बहुत सारी कॉल्स लेने की कोशिश करेंगे. सो कॉलर मेरे साथ लाइन पे मौजूद होंगे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से हेलो करें.
1: सागर भाई,
0: सागर भाई कैसे? ठीक ठाक. थोड़ा सा लाउडली बात करें. और बहुत दिनों बाद कर रहे. और मुझे ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है प्रोग्राम? चलें फिर इसी बात पे. इसी बात बता दें
1: जी?
0: इसी बात पे आज की अच्छी बात बता दें.
1: अच्छी बात ये है कि मैं बस बाबा सारी मानना चाहिए और टाइम जाया नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता. बस रब पाक हर किसी को अपना मोहताज रखे, किसी को दूसरे का मोहताज ना रखे.
0: चले बहुत जबरदस्त बात, थैंक यू सो मच. और कुछ कहना है?
1: मैम गाने का सेगमेंट खत्म हो गया.
0: गाने का सेगमेंट खत्म हो गया.
1: डॉक्टर शेर खाली.
0: हाँ अब तो प्रोग्राम ही खत्म होने वाला है.
1: बस भाई मेला खत्म हो गया. मैं आखिरी में जो है पंडित.
0: मेला खत्म हो गया. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच.
1: खत्म हो गया. मैं आखिरी में पहुंचा झाड़ू लगाने के लिए.
0: बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने अच्छी बात बता दी. बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज. ये थे कॉलर और मैं कोशिश करूंगी कि एक और कॉलर लूं और फिर उसके बाद एक और कॉलर लूं. अच्छा नेक्स्ट कॉलर चेक करेंगे जी. कॉलर कहाँ से हेलो हेलो हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है. नहीं करनी बात.

0: हेलो सलामुअलैकुम।
1: मैडम रुखसार, आवाज आ रही है?
0: जी जी बिल्कुल आ रही है। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: तेरी आवाज मेरे तक नहीं पहुँच रही है मैडम रुखसार।
0: अच्छा पहुँच नहीं रही है, पहुँचेगी। थैंक यू। 0300।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वाह, इससे जल्दी लास्ट लकी कॉलर है आज की, अच्छी बात बता रही।

ओके जी फाइनली इसी के साथ मैं होगी शाम, साथ से लेकिन मत भूलिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिए, आरजे रुखसार साइंस खुदा अल्लाह।

0: अपना शहर और मवाद
1: GFM.6
2: भरोसे का
3: GAKTN न्यूज़।

हुज़ैफ़ा खे जवाबदार तौर नामज़द कयो वियो। गुल प्लाज़ा कमेटी जे सदर तनवीर पास्ता, नायब सा इस्माइल ऐं ॿियनि खे बि केस में नामज़द कयो वियो। जांच रिपोर्ट मूजिब गुल प्लाज़ा में बाहि लॻण सबब 72 माण्हू सड़ी फोत थिया। हिन वक़्त ताईं 4 लाशनि जी बाक़ियात कंहिं बि वसूल नाहे कई। सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबति सिंध हाई कोर्ट जे फैसले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे CCA 2024 जे पेपर जो समूह सील करे पेश करण जो हुकुम ॾिनो हो। खैरपुर जे कच्छे में कोराई बिरादरी जी बिंदुरुनि में झेड़ो, हिकु ॼणो क़त्ल, 2 ज़ख़्मी। होलो थाणे जे हदर ॻोठ कोराई जी बिंदुरुनि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो थियो। फायरिंग में रोशन कोराई मारिजी वियो। कड़ावड़ ऐं मोहम्मद सिद्दीक कोराई ज़ख़्मी। छिकताण वधी वई।

सिंध में पाणी जी खोट खिलाफ़ सिजावल जुड़े जो ऐं मीरपुर भठोरो में धरणा। सिजावल जुड़े जो में हारण आबाद मीरपुर भठोरो में आबादगार फसल जी मुंद आहे पर पाणी अणल बि आहे। नोटिस वठी पाणी फराहम कयो वञे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे नतीजनि में मुबैना बेज़ाब्तगीनि ख़िलाफ़ उमीदवारनि जो एहतजाज। उमीदवारनि ऐं शागिर्दनि मुज़ाहिरे बाद आलामा दाऊद पोटो लाइब्रेरी वटि एहतजाज में उमीदवारनि सां गॾु सियासी

वाइट रेंज फिंटीज के ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है वाइट रेंज ब्यूटी प्रोडक्ट आगे सिद्धर आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं। अगर आप हमें क्या तरीके का जिन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे सब कुछ बताएंगे। लेकिन टॉपिक यानी कि सवाल की अगर सवाल आए तो आप ये बताएंगे या ऐसा कह लें कि आप मुझसे पूछेंगे या फिर मुझे। टॉपिक कुछ यूं होने वाला है कि

0: राइट ऑप्शन में जाइए ताकि पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 888-1 पर। और अगर आप हमें फेसबुक पर सुनते हैं होते हैं तो आज थोड़ा सा उनके लिए ऐसा है कि बैड न्यूज है, क्योंकि आज फेसबुक पर जो पोस्ट है वो जरा अपलोड नहीं हो सकी थी, थोड़ा सा कोई टेक्निकल इश्यू है जिस वजह से। तो आप ऐसा कीजिए, हमें पैनल पर मैसेज कीजिए और इसके साथ साथ में कॉल तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो प्रोग्राम की रौनकों को मजीद बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जो कि आप लोगों के लिए है, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप खूबसूरतियां हासिल कर रहे हैं। और वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी खाता है बल्कि आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी कर रहा है। और वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि हर तरह के प्रोडक्ट्स। अब मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के साथ, तो एक ऐसी बात भी है कि आप लोगों में से बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, सुने हैं, या फिर बहुत से लोगों की ये आदत होती ना, वो ये कहते हैं कि भाई हम फला प्रोडक्ट नहीं लगाते, हमारे लिए ये वाला प्रोडक्ट होना चाहिए तभी हम इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग साबुन नहीं लगाते, कुछ लोग फेस वॉश नहीं लगाते, कुछ लोग नाइट क्रीम नहीं लगाते हैं, कुछ लोग फेयरनेस क्रीम लगाने वाले हैं, कुछ लोग एक्नी की वजह से परेशान हैं। तो हर तरह का प्रोडक्ट भाई वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बस आप हुक्म कीजिए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं बताऊंगी कि वो प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के ऊपर किस तरह से काम करेगा और किस तरह आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी रखेगा। तो खूबसूरत रहेंगे, खूबसूरतियां हासिल करेंगे और वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहेंगे। और साथ ही साथ शाम में प्रोग्राम होते जाइए और मुझे बताइए, अगर एक मशवरा आप मुझे देना चाहें, एक मशवरा, मुफ्त वाला मशवरा, तो ऐसा कौन सा मशवरा होगा जो कि आप लोगों को लगता है कि इस मशवरे की सिदरा को जरूरत है। हाँ जी, वैसे तो मशवरों की जरूरत होती है हर एक इंसान को, लेकिन मशवरा जो है वो जरा काम का और ढंग का होना चाहिए। तो आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आप हमें ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल जी आपके मैसेजेस, आपकी प्यारी प्यारी बातें जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। ओके जी, सो आपकी कॉल्स भी, लाइव कॉल्स भी बिल्कुल जी प्रोग्राम का हिस्सा होने वाली है। आप हमारे प्रोग्राम का और लाइव कॉल को जो है ना वो 2 बजे, कॉल जो है वो 2 बजे के बाद ही ली जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर लिया है जी विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्राम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी। बाजी सिदरा आप कैसे हैं और हाउ आर यू? हम सारा काम छोड़कर आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं, आपकी आवाज बहुत प्यारी है बाजी, हम आपकी खातिर नींद को छोड़ते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ते। हीरा कुल का गाना सुनाइए, दिल तो खे नहीं छड़ी चाहे याद करने थोरो तांखे बुधराई नासी प्यारा भात तांजो मोहब्बतू आइन तमा निंड्र खे जगो ने साइते रखी करे तां संजो प्रोग्राम बुधन आयो तांजो मोहब्बतू आइन एडा प्यारा प्यारा मैसेज कना पो सचम। ओके जी, सो तां अगर मुखे को मशरो दियन चाहे हो तो केडो मशरो जको तांखे लगे तो तही दियन घुलजे। अच्छा, फहद एरी हमारे साथ और ये सऊद एरी है, नवाब शाह कहते हैं मोलाद सलामत अदी शो तुम बेहतरीन है, थैंक यू सो मच प्यारा भाता जो मोहब्बतू है। एक मैसेज के तुम दफा शेयर कर छो है उन्हें लाइ भी मोहब्बतू, वरी टों दफो भी तुम मैसेज अची वो है सेम, तो उन भी मोहब्बतू। मायरा असो प्रोग्राम बुधे पी, मायरा तुम भी मोहब्बतू है प्रोग्राम में, अगर तुम सागर मौजूद है तो असा बुधाइंदा हलो पैनल थी तुम मैसेज कन्ा तुम कॉल्स कन्ा। अज कॉमेंट्स वो थोड़ो सिस्टम है ना वो थोड़ो ऑफ है, छो तो कहीं कहीं ये टेक्निकल इशूज भी अची वा, ये टेक्निकल इश्यूज भी असि जिंदगी जो हिस्सो है। सो का गाल कोनी का। ओके जी, मजे करते हैं प्रोग्राम में आप लोगों के साथ साथ और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाने लगे हैं। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हमारे पास, हम जल्दी से वापसी आप लोगों के पास, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए। रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते रहिए खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
2: इट्स 1:30 PM, दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, कुदरती जिजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो, हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और

0: बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन, पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज़,
2: GFM 91.6।

मास्क लगायो अच्छे तरीके से पांजो फेस वॉश कयो क्लीन कयो उनखा पई डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको पांजी स्किन ते अप्लाई कयो तवाजी चेहरे जा दाणा हुजन निशानात हुजन या फिर कोई धक जो निशाना कोई सड़न जो निशाना ये भी अगर निशान तवाजे चेहरे ते मौजूद आन उई भी खत्म थी वेंदा एंड डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तवाजी स्किन के सफा क्लियर बनाइंदो खूबसूरत बनाइंदो एंड शाइनी बनाइंदो उनखा अलावा असा वट रहजे तो बाबा एकड़ो प्रोडक्ट जेजो नालो आ व्हाइट एश लवली क्रीम एंड व्हाइट एश लवली क्रीम जेका तवा जाहिर सी गाला ही उनन मानन जे लाया है जेके भई फेयरनेस क्रीम लगाइंदा आ या फिर उनन के यो आता सा उम्र असांजी नंढी आहे असां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयूं अञा तव्हांजी उमिरि नाहे थी त तव्हां व्हाइट एश लवली क्रीम इस्तेमाल करे सघो था छो त हिन जे अंदरि वाइटमिन्स जो फार्मूलो एड थियल आहे 30 वाइटमिन्स कैप्सूल आहिनि रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स सां ठहियल हीअ क्रीम आहे फेयरनेस फार्मूलो आहे व्हाइट एश लवली क्रीम जंहिंजे अंदरि सनस्क्रीन बि एड थियल आहे ऐं तव्हांजी स्किन खे ख़ूबसूरती ॾियण सां गॾोगॾु तव्हांजी स्किन खे उस जे असरातनि खां बि महफ़ूज़ रखंदी आहे सो व्हाइट एश लवली क्रीम जेके तव्हां ॿार आहियो मर्द आहियो ख़वातीन आहियो जवान आहियो कुराड़ा आहियो हर कोई इस्तेमाल करे सघे थो एतिरो ज़बरदस्त फार्मूलो आहे की तव्हां जॾहिं इस्तेमाल कंदा तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो त वाकई तव्हांजे हथ केॾो भलो प्रोडक्ट अची वियो आहे ऐं तव्हां ज़रूरु हिन खे ट्राए करे ॾिसजो जेके माण्हू क्रीमूं न बि लॻाईंदा आहिनि त हू जॾहिं व्हाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमाल करे ॾिसंदा तॾहिं तव्हांखे अंदाज़ो

आप आ रहे हैं आपके मैसेजेस हैं, जल्दी से आपके मैसेजेस पर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों की कॉल्स भी पिक करनी है मैंने। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं स्वीटी आप कैसी हैं? हमारी निदा अली हमारे साथ मौजूद और कहती हैं, फॉर यू मैं और तुम जिस दिन मिलेंगे वो दिन वक्त की पेशानी पर चमकता हुआ एक रोशन सितारा होगा, वो लम्हा जब तुम सामने होगी और मैं अपने सब लफ्ज भूल जाऊंगी और दिल की धड़कन ही मेरा तावर बन जाएगी, तारुफ बन जाएगी और तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी दुनिया, वो दिन सबसे खूबसूरत दिन होगा। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत जाने बिल्कुल सुन रही हैं। तो अलीजा को भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया, दोनों परियों का आप हमारे प्रोग्राम की रौनकें हैं जी, तो खुश आमदीद। अच्छा ठूप चूसल से मुलाई मुजाहिद बुजार हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कहते सिडो जी कैसी हैं आप, उम्मीद के मेरी तरह ओके अल्हम्दुलिल्लाह, लस्सी का गिलास और ठीक है सिडो जी, टॉपिक आपके लिए मशवरा ये है कि हस्ती रहा करें, हस्ती संभाल के रखती हूँ अपने पास और ये हमारे साथ हाजी हमारे साथ मौजूद है, ओके मैं कोशिश करती हूँ, आपका गाना मुझे मिल गया तो लगा देंगे और एक ही मैसेज को आपने चार पांच मरतबा शेयर कर दिया है, ओके जी बहुत शुक्रिया। इमरान अली कहते हैं, बाजी टॉपिक है आप अपने, अच्छा चलें ये तो आपने थोड़ी सी बात अच्छी वाली कर दी है या पता नहीं मुझे समझ नहीं आया तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा कहते हैं, जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ जहाँ जिंदा तो हूँ मगर अपनी जिंदगी के लिए नहीं, अपने ख्वाबों के लिए। क्या बात है इमरान भाई, आपको वेलकम कहा जाता है, ख्वाबों के लिए जिंदा रहना भी अच्छी बात होती है। और ये हमारे साथ है, मेरी छोटी बहन कुलसुम भी आपका प्रोग्राम सुन रही है और मेरे माँ बाप भी आपका शो सुन रहे हैं। शहबाज जमाली नवाब शाह से हमारे साथ है, गाना आपने बोला है बिल्कुल जी, आपका गाना लगाते हैं, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और मुझे ये बताइए व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स नवाब शाह में मिल रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितनी अच्छी प्रोडक्ट्स है। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहिए, जोन सा भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लगाइए और फिर आप मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। और साथ साथ डायल करते रहिए 03 15 7।

ओके जी, हमारे साथ मौजूद है साइमा मीर। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह मक्खन जैसी आज रहे सिद्रो, आप कैसी हैं? सेहत तबीयत कैसी है? शो मस्त बेस्ट है। सलाम अम्मी जान और वरियाम भाई को। ओके जी, ओके। और इरम हमारे साथ कहती है, ओ मेरी दिलबर दोस्त, मैं आपका रोजाना शो सुनती हूँ, लेकिन पता नहीं आजकल आपको SMS करने में थोड़ी सुस्त। कोई बात नहीं, बस बता दिया करें कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और साइमा मीर कहती है टॉपिक RJ। ओके कहती है RJ हो तो जस्ट RJ ही रहना, कहीं और ना जाना। जी मैं भी ऐसा सोच रही हूँ। हाँ मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन जो चीजें हम चाहते हैं तो वो शायद हो नहीं पाती है जिंदगी के अंदर। तो बस जो अल्लाह पाक ने लिखा होगा नसीब में वो हो जाएगा सब कुछ, और बस हम कोशिश करने वाले इंसान हैं और हम कोशिश करेंगे। अच्छा ये इमरान भाई कहते हैं कि सारी उम्र रखा है भरम बेफेज रिश्तों का, सच पूछो तो अपने सिवा कोई भी अपना नहीं होता। ओ यह गाल कही ना।

तो बिल्कुल भी बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप सुन रहे हैं। वाइट स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावेगा जरूर, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो कल 8-1 पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। और आज आप कोई सा भी मशवरा और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आपकी कॉल हम पिक करेंगे। न्यूज ब्रेक आने वाली है, आपके साथ मुखातिब होने वाले हैं तो बिल्कुल आपकी कॉल्स होंगी और आप लोगों के साथ साथ कॉल पर चिट चैट करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0323221322888। मुझे तो मैं बात करो सर, ये मैंने ना कंट्रोल की, मतलब बोलने ही वाली हो कि भाई हम रोजाना अगर जो भी चीजें बोल रहे होते हैं ना तो ऐसे बस मैं बोल देती हूँ। तो आज भी मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, कोशिश की कंट्रोल की, लेकिन ये हो गया बस कि मैं बोल ही गई कि भाई पोस्ट को लाइक और शेयर। चलिए आप ऐसा करें कि नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, नंबर है 03199905 नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, उन्हें बताइए कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड व्हाइट एश के जितने भी प्रोडक्ट में नहीं मिल रहे और सास प्रोडक्ट्स भी जल्दी न्यूज ब्रेक आ रही है, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगी, आपके पास आते हैं, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरी 3 बजे तक।

मोदी पाकिस्तान मथां आबी दहशतगर्दी करण चाहे थो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल चई चुका आहिनि त पाणी बका जो मामिलो आहे, रंडक क़बूल न कई वेंदी। सुसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त सिंध तास खां मुअत्तल नथो करे सघिजे। सिंध तास माहिदे बाबति भारत जे मौक़िफ़ खे कंहिं बि फोरम ते पज़ीराई नाहे मिली। सिंध तास माहिदे खे ॿिन्ही मुल्कनि तस्लीम कयो हो। पाकिस्तान पाणीअ में रंडक खे क़बूल न कंदो। आबना हरमुज़ बाबति ईरान ऐं ओमान पारां ठहियल कमेटी जो पहिरियों इजलास। आबना हरमुज़ सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त कतर में मौजूद ईरान जे 12 अरब डॉलर मां 6 अरब डॉलर जारी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामेनेई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बहरैन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजी हदुनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल लाइ सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर। कराची जे कारोबारी मर्कज़ गुल प्लाज़ा खे लॻल बाहि हादसो करार, पुलिस चालान प्रोसिक्यूशन वटि जमा कराए छॾियो। गुल प्लाज़ा बाबति अदालती जाच रिपोर्ट खे चालान जो हिसो न बणायो वियो। दुकानदार नेमतुल्ला ऐं संदसि 11 सालनि जे पुट हुज़ैफ़ा खे जवाबदार तौरु नामज़द कयो वियो। गुल प्लाज़ा कमेटी जे सदर तन सदर अमार इस्माइल ऐं ॿियनि खे बि केस में नामज़द कयो वियो। ताईं 4 लाशनि जी बाक़ियात कंहिं बि वसूल नाहे कई। सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबति सिंध हाई कोर्ट जे फैसले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे सीसी 2024 जे पेपर जो समूरो रिकॉर्ड सील करे पेश करण जो हुकुम ॾिनो हो। कैरपुर जे कच्छ में कोराई बिरादरी जी बिंदुनि में झेड़ो, 1 ॼणो क़तल, 2 ज़ख़्मी। फुलो थाणे जे अध ॻोठ कोराई में कोराई बिरादरी जी बिंदुनि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो थियो। फायरिंग में रोशन कोराई मारिजी वियो। करावाड़ ऐं मोहम्मद सिद्दीक कोराई ज़ख़्मी थिया। धुरिन में छिकताण वधी वई। सकरनि वेझो वॾी अॻु सिंधु दरिया में टिकटॉक वीडियो ठाहींदे ॿुधी वियल नौजवान फ़हीम जुणे जो लाश थिए। ॻोठ दंगवासी नौजवान फ़हीम जुणे जो टिकटॉक ठाहींदे दरिया में ॿुॾी वियो हो। कोटड़ी भरिसां सिंधु दरिया मां अधरोड शख़्स जो लाश थिए इस्पताल मुंतकिल, सुञाणप न थी सघी। सिंध में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबा

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: इस फोन के कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो।
4: एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिए आप?
5: एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ से गिफ्ट।

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती ज़हन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: हम एक खोखली औरत, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
3: मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो मैं पागल हो जाएगा।

0: अजरंगी
1: टुकड़ों से जुड़ी
0: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अच्छा आयरम थैंक यू सो मच किड जी. अलाए किड़ो मस्त कॉल सेंड थियो इन चीज को सिर्फ स्किन ब्यूटी वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जितावन सा इकली नेक्स्ट कॉल वठू थाने सुन ता छा खबर ही सही है कॉल. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम. आमजद अली विस्तरो.
0: ओके ओके कितना कॉल कई आमजद सफा तुम आवाज वी आई पी तो अचे सभी जोड़ो आवाज वी आई पी अचे नी जबल से चढ़ा बीठा चा भला. बिल्कुल यही गाल है मुख्य बुधा प्रोग्राम बुध अमजद भा तुटकी वे हाँ तुम आवाज भी कटजे तो याद कंदा. अच्छा वाइटिश जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कया था भैया डी स्किन जा बुधा तो अलाई छा चयो. थैंक यू सो मच जी. सो कॉल सच्ची बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि कॉलर्स क्या कह रहे हैं और ये कॉल के साथ क्या मसला है. और चलिए जी हम कॉल्स तो लेंगे लेकिन आप लोगों के कुछ मैसेजेस हैं तो उनको भी पढ़ लेते हैं और आप क्या कह रहे हैं वो भी जरा देख लेते हैं. तो कॉलिंग नंबर है 0332132288. कॉल करें तो किसी ऐसी जगह पर जाकर खड़े हो जाएं जहां पर आपको लग रहा होगा यहां पर नेटवर्क फुल आता है. ओके जी. सो यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम सरोजानी क्या हाल है. मैं भी आपके साथ साथ हूं. नाइस शो एंड आई शेला गुल का सॉन्ग मु दिल तो के नहीं छड़ी सडो मु दिल तो के नहीं छड़ी मु दिल तो का वठी छड़ी मु दिल तो का वठी छड़ी. लुबना हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी लुबी आपको वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं. और उनका अलावा हमारे साथ हैं जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान कैसी हो डियर डियर सफा भलिया तां बुधाए कि आयो फजीला सिंधी हमारे साथ मौजूद है खुश आमदीद करते हैं आपको फजीला सिंधी. और जी यहां पर

0: सरियो एतमाद सा कुरान के कुरान रोजानो सुबह 9 लगी 55 मिनटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटिया

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को इस प्रोग्राम में बताया जाता है। वो इसलिए बताया जाता है ताकि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी समाते हैं, जितने भी प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, उनको ये पता हो कि जब आप इस्तेमाल करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो आप लोगों को अंदाजा हो कि आप जो चीज परचेज करने जा रहे हैं तो वो चीज आप क्यों परचेज करने जा रहे हैं। अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि हम अगर चीजें परचेज करने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट देकर हम जरा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और आप लोगों में ये अवेयरनेस लाने के लिए कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो आप लोगों को पहले से उसके बारे में पता हो, तो बिल्कुल उन्हीं चीजों के बारे में बात करने के लिए प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके, सो आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है उनको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। और इसी के साथ साथ

ओके जी, गाना जरा कितना अच्छा गाना मैंने आप लोगों के समातों की नजर कर दिया है। बिल्कुल जी, गाना तो सुन रही हो साथ ही साथ प्रोग्राम के लास्ट लिंक में लोग ऐसे हमें कमेंट को आप बिल्कुल इस्तेमाल स्किन ब्यूटी क्रीम खास करके उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो लोग ज्यादा प्रोडक्ट तो ऐसे फेस के लोगों

ये गाने सुनेंगे आप लोगों के मैसेजेस हैं, जरा उनकी जाने भी आ जाती हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं तो देखते हैं कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर फजीला सिंधी हमें सुन रही हैं, कहती हैं डियर स्वीटी आप कब से शो कर रही हैं, मुझे शायद आज ये तीसरा शो होगा। हाँ जी, और उसके अलावा कहती हैं ओए प्यारी आपका तो पता नहीं बाकी आपकी आवाज बड़ी मीठी है। थैंक यू, शुक्रिया। काम समीदा बताने से मुझे यूं घबराती क्यों, ओके जी। निदा कहती है कि क्या था मशवरा बताए ना, ये कहूँगी कि आप जैसी हैं वैसी ही रहिएगा, क्योंकि जो लोग ऐसा होता है ना कि जो तब्दील हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं वो लोग जरा अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। और उनके अलावा साइमा मीर कहती है ख्वाब में तो अल्लाह केतरा भेरा वर्त में अल्लाह जी इंशाल्लाह दिल जाएगा जी ये लाड़काना। ओके जी, ओके लाड़काना आप आइएगा तो परचेज कीजिएगा, क्योंकि आप करेंगी इस्तेमाल करेंगी तभी तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा वाला प्रोडक्ट है, तो इस्तेमाल कीजिएगा। और विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा इमरान भाई कहते हैं कि शाह इंतजार करनी मोहब्बत आहे या वो भी पाण सा जुलम है, अलाई या चीजें समझ में नहीं दिया। ये बातें मुझे मत पूछा करें। और सैमा कहती है कि नियो कौन सा बिल। अच्छा इरम कहती है आपकी जवाब है ओके जी, ओके इंशाल्लाह इससे तो पहले ही होगा मुझे ये लग रहा है, आप टेंशन मत लिया करें। और शोनी कहती है आपकी जान में भी आ गई आप के शो में, अभी अभी उठी हुई जी और एक स्पेशल सा गाना लगाया है, ये स्पेशल सा गाना है जो कि मैं आज मेरे मौका भी है दस्तूर भी है तो उस गाने को सुन लेते हैं, ये मेरा फेवरेट गाना है।

गाना झोंका और ये गाना आपका फेवरेट है और ये गाना मैंने आज पहली मरतबा प्रोग्राम में लगाया और इसी के साथ साथ एक और गाना जी को स्पॉन्सर्ड किया स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बताएं ना।

यहाँ पर हमारे जाने का वक्त भी बड़ा करीब। व्हाइट एज शो, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप मौजूद है। लिपी क्रीम नाइट क्रीम है और व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है जिसे आप यानी कि हर कोई इस्तेमाल फेयरनेस क्रीम जिसे आप मेकअप के तौर एंटी एक्ने ट्यूब आपके लिए अवेलेबल है। व्हाइट वॉश आपको मिल रहा है एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम ने सारे अच्छे अच्छे मजे के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप परचेज करेंगे इस्तेमाल करेंगे और खूबसूरत हो जाएंगे। नहीं कि बस आप इस्तेमाल कर दे रहे सनी बदसूरती मिलेगी वो हमेशा रहेगी। लोकिन में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। कीजिएगा 03157005। चलो तमाम से मुलाकात मुझे बिल्कुल मैं कल लाजमी आऊंगी। शुक्रिया। और शहबाज भाई आ में तो जरा माजरत कर देते हैं। गाना हलासा गुड ही नो सरो ख्याल रखें ताकि सुठो न लगो जे बाबा।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: छोड़ा, उसे खो खेलती हूँ।
1: माजी था ये मेरा।
0: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।
1: मुझसे बात

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

0: रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, शाम 6 बजे 8 बजे तक, इतवार और जुमाते हैं। अथया अस्पताल रोड करीब, नंबर 03-6177। सिंधड़ी आमो की
1: शहर
0: खास
2: अवां चाहियो था अवास आवाज जेको अवां जो पैगाम हंद जीए मीरपुर खास एंडन वडन शहरन में मीरपुर खास एफएम 88 0272430137220711
0: मीरपुर खास की आवाज।

0: टॉपिक सुनाए।
1: पर टॉपिक कैसे कुछ कुछ दूर कुछ पास, हाँ 50 में वो रहती है दोस्त फोन की वजह से, और जो घर नहीं है क्योंकि फैमिली सारी साथ बैठी है
0: तो उनके पास मतलब सोशल टाइम में इंसानों के लिए वक्त घट गया। सही, चलें आपकी राय हम तक पहुँची है आज। चलें निदा को भी थैंक यू कहिएगा और मम्मी से कहिएगा आप सब।
1: अभी भी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे, शाम हमेशा खुश रहें।
1: अल्लाह
0: हाफिज़। कॉलर हैं दोनों सिस्टर रोजाना हमारे प्यारा सा हिस्सा बनती है ना हमारे प्रोग्राम में शाम जब उनकी कॉल लगता है। देखते हैं लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन
2: बात कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप हैं मुझे?
0: थैंक यू फरा, क्या कहेंगी?
2: देखिए मैं अभी आई हूँ, अभी अभी मैंने स्लिप लगाया है आपका मोबाइल।
0: मैंने को तोड़ा है, क्या कहें?
2: दोनों ही है कि
0: अच्छा है, दूर भी किया है।
2: बिछड़े हम वो रमजी जो जाए
0: रेशमा का है ना, आई थिंक
2: रेशमा का
0: 4:30 से पहले आपको इंशाल्लाह लजीज़ फरा। थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज़। ओके, अरे वाह, क्या क्या लीजेंड सिंगर्स हैं। ये देख सॉन्ग सुहा कैरी भी कम, तो क्या ही कहना है। वक्त भी किसी भी मूड में कहीं भी किसी भी आप हो, अब वो ओल्ड होगा आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और आपके चेहरे पे आएगी ये। हालांकि मैं नजूमी ने प्रिडिक्शन है नेक्स्ट कॉलर इस्लाम कहेंगे मोबाइल ने कर दिया है। आपने बिल्कुल मोबाइल फोन पे बातें हो जाती हैं, बहुत फासले मतलब बढ़ाए ज्यादा वो कम। चले ठीक है, अच्छा सिंगर का क्या नाम लिया आपने? सिंगर का क्या नाम बताया आपने? ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। आई विल ट्राई, चेक करेंगे हम, अगर मौजूद हुआ ये वाला गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। और तुंजू यादों आई ही अकेला ही, आई थिंक ये किसी और सिंगर ने भी गाया है, मैं अगर अपने जहन पर जोर डालती हूँ, लेकिन आपको ले चलती हूँ नेक्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? मैं कैसी हैं? अरे वाह, मैं कह गई हमारे स्टूडियो में जबरदस्त हो गया। मैं कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, बाकी आप सलाम?
0: अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
2: बाकी मोबाइल तो करीब करे के दियो है, कहके परेड करे के दियो, कहके वीडियो करे के दियो। मोबाइल फोन के को है तो दुखी में मोबाइल फोन ही काम आते दो।
0: अच्छा, दुख में मोबाइल कैसे काम आता है ये मुझे बताएं आप।
2: जो दूर का होता है उसे जल्दी जल्दी फोन करते हैं, बुला लेते हैं।
0: अच्छा, वो आ जाते हैं मतलब उनके पास वक्त होता है आने का?
2: बिल्कुल बिल्कुल आ जाते हैं।
0: चलिए,
2: परेशानी होती है तो फोन करते हैं तो आ जाते हैं।
0: सही, अच्छी बात है, हमेशा ऐसे ही खुश रहे आप अपनों के साथ। महक बहुत शुक्रिया आपका, याद कर लें अपने फ्रेंड्स को। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सबकी जानिब से ढेरों सलामती हो, आपके लिए भी महक। और सबकी देखें अपनी अपनी इस हवाले से राय होगी, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होगी, सबका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ चेंज होगा। नेक्स्ट कॉलर को देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम अली,
0: वेलकम कहते हैं, कौन बात कर रहा है?
3: अजी कुर्बान अली खास के लिए वो बनाया वो तो आज गुलाम खास के लिए ने भी किया।
0: क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? दोस्तों को याद कर ले, हमने ब्रेक पे भी जाना है।
3: हाँ दोस्तों, काफी जगह गुलाम रसूल मरी आए, अजीज संगी यार मोहम्मद सोलंगी कानक लाचारी के लिए
0: सब नहीं पा रहा। वाले वाले से हमें बताया है, नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी यास्मीन, क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
2: मोबाइल फोन ने तो मतलब रिश्तेदार को अजीज खानदानों को तोड़ दिया एक तरह से। पहले मेल जोल बहुत ज्यादा हुआ करते थे, दुख सुख में जाते थे, सब अब खत्म हो गया।
0: अच्छा, आप ये कह रही हैं कि फासले ज्यादा हो गए हैं इसके आने के बाद?
2: फासले बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं।
0: सही,
2: दिमाग की भी आयादत करने जाते थे लेकिन अब तो अभी सब कुछ मोबाइल में हो जाता है।
0: सही, चले ठीक हो गया यास्मीन, आपकी राय हम तक पहुंची, बहुत शुक्रिया।
2: मेरी तरफ से सब सुनने वालों को सलाम,
0: सबकी जानिब से ढेरों सलामती, आपके लिए भी थैंक यू, आप भी सलामत रहें।

0: अब आप सुनेंगे एम नेटवर्क पर।
1: कराची में एहतजाज अफगान नाजिम अलमू जी पर हमले में साबित थे तो अफगान सदर खिलाफ दहशतगर्द थी रही है। मोदी पाकिस्तान मथा आबी दहशतगर्दी करण चाहे तो वजीर आजम ए फील्ड मार्शल चई चुका है पानी बका जो मामलो है रंडक कबूल न कई वेंदी। सुषमा वाले वफाकी वजीर अता तारड़ चवा है सिंधदास माहदे के एक तरफ का मुअत्तल न तो कर सके। सिंधदास माहदे बाबत भारत के मौकिफ के कें भी फोरम से पजीराई ना मिली। सिंधदास माहदे के बिन्हीं मुल्क तस्लीम किया हो पाकिस्तान पानी में रंडक के कबूल न कंदो। आबला हरमुद बाबत ईरान ए ओमान पारा ठहल कमेटी जो पहरियों इजलास आबला हरमुद बाबत गडल मुशावरत से फैसला करने ते तफाक। ईरानी नायब पदे वजीर काजिम गरीब आबादी ईरानी वफद की क्यादत कई। ओमान जो नायब पदे वजीर वफद से गड गाल में शरीक थो। काजिम गरीब आबादी चवा है गडजाणी में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त नामे तहत सामूरी रियासतों की खुदमुख्तियारी हकन की रोशनी में आबला हरमुद के मुस्तकबिल इंतजाम बाबत गाल कई। ईरान ए अमेरिका जो एक बेटे हमला रोकण ए कतर में गाल करते इतफाक। अमेरिकी मीडिया की दावा अमेरिकी मीडिया मूजिब तेहरान एक बेटे हमला रोकण से इतफाक किया है। बिन्हीं मुल्क विच में सुभाने मामले ते दोहा में सीधी रीत गाल भी थन्दू जिनो महवर आब ना हरमूस हों। बिन्हीं मुल्क विच में मुफाहमती यादाश्त तहत टेक्निकल सतह जो गाल भी जारी हैं। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी चवा है अमेरिका इसराइल वायदे की भनकड़ी कर रहा है जै सबब खिते में अमन ए इस्तेहकाम बहाल न थी रो है। माहदे से नेकनीति से अमल दरामद जहा ख्वाहिशमंद आय माहदे की भनकड़ी से बी धुर खिलाफ फैसला कदम खाया वा। ईरान कतर में मुंजमद कल 12 अरब डॉलर के ईरानी असासन में 6 अरब डॉलर जारी करण जो मुतालबो कर छो। ईरानी सदर मसूद पेज़िश्कियान चवा है कतर में मौजूद ईरान के 12 अरब डॉलर में 6 अरब डॉलर जारी थे घुर्जन। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सलाहकार अली अकबर विलाय बहरन के खबरदार क्यों पांजे मुस्तकबिल से रांद न खेले ईरान के सख्त फैसलो करण से मजबूर न किया वे। कराची कारोबारी मरकज गुल प्लाजा के लगल बाहे हादसों करार पुलिस चालान प्रोसिक्यूशन वट जमा कराए छो। गुल प्लाजा बाबत अदालती जांच रिपोर्ट के चालान जो हिस्सों न बनाए वो। दुकानदार नेमतुल्लाह संदस 11 साल के पुट हुज़ैफा के जवाबदार नामजद किया वो। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता नायब सदर अमार इस्माइल बेन के भी केस में नामजद किया वो। जांच रिपोर्ट मूजिब गुल प्लाजा में बाह लगने सबब 72 मानू सड़ी फोत थे चैन लाशन कई। सिंध हुकूमत सिलेक्शन बाबत सिंध कोर्ट में चैलेंज कर सील कर पेश कर। कैरपुर के कच्छे में कोराई बिरादरी की बिंदुरी में झेड़ो बजना कतुल एक जख्मी। फुलो थाने के हद गोठ कोराई में कोराई बिरादरी की गाल झेड़ो थो फायरिंग में रोशन ए कोराड़ो कोराई जख्मी थो। धुरन में सिंध में पानी की खोट खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज पर मीरपुर भठोरों में धरना। नवीसर का पानी की खोट खिलाफ इकतल आबादगार पैदल मार्च कुंडी पहुंतो ऑफिस अगैं धरणो। दोदापुर में भी आबादगार पारा पानी की खोट खिलाफ एहतजाज किया वो। मीरपुर भठोरों में आबादगार
0: आप सुन रहे थे जीए

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: पाकिस्तान आडो सख्त एहतजाज, अफगान नासिब लुक मोर्जी पढ़ई आफिस तलबी, दहशतगर्द खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। पढ़ई आफिस मूजिब कराची में दहशतगर्द हमले में साबित थो अफगान सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ दहशतगर्दी ला इस्तेमाल थी रही है।

मोदी पाकिस्तान मथा आप ही दहशतगर्दी करण चाहे तो वजीर आजम ए फील्ड मार्शल चई चुका है तो पानी पका जो मामलो है डंड कबूल न कई वी सुध समाव वारे फाकी वजीर अताउल्ला तरण है सिंध तास माहिदे के मुअत्तल नथो करे सकजे सिंध तास माहिदे बाबत दुनिया पाकिस्तान जो मौकिफ तस्लीम कयो है वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पाकिस्तान पेंजे पानी तरफ वधंदड़ हर हथ काटे छदींदो पानी ते धाड़ो बर्दाश्त न कयो वेंदो आपना हरमुज बाबत ईरान ए अमान पारा ठायल कमेटी जो पहरियों इजलास आपना हरमुज बाबत गडियल मशावरत सा फैसला करते तफाक ईरानी नायब वडई वजीर कासिम गरीबाबादी ईरानी वफद की क्यादत कई अमान जो नायब वडई वजीर वफद सा गड गालियन में शरीक थियो कासिम गरीबाबादी है गडजाणी में इस्लामाबाद मुफामती यादाश्त नामे ते सामुंडी रियासतन की खुद मुख्तारी ए हकन की रोशनी में आपना हरमुज के मुस्तकबिल इंसान बाबत गाल हुई ईरान ए अमरीका जो एक बेते हमला रोकण ए कतर में गालू करण ते इतफाक अमरीकी मीडिया की दावा अमरीकी मीडिया मूजिब तेहरान एक बेते हमला रोकण ते इतफाक कयो आहे बिन्ही मुल्कन विच में सुभाणे मामले ते दोहा में सिधी रीत गालू भी थींदियूं जंहिंजो मेवर आपना हरमुस हूंदो बिन्ही मुल्कन विच में मफामती यादाश्त तहत टेक्निकल सतह जूं गालू भी जारी आहिनि ईरानी पटेल वजीर अब्बास राखी है त अमरीका इसराइल माहिरे की भजकड़ी कर रहा है जै सबब खिते में अमन ए इस्तेकाम बहाल न थी रो है माहिदे ते नेकनीयती से अमल दरामद जा ख्वाहिशमंद आयू माहिदे की भजकड़ी ते बी दुर खिलाफ फैसला ता कदम खया वेंदा ईरान कतर में मुंजमद कयल 12 अरब डॉलर के ईरानी असासन में 6 अरब डॉलर जारी करने का मुतालबो कर छो ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान है कतर में मौजूद ईरान के 12 अरब डॉलर्स में 6 अरब डॉलर्स जारी थियण घुर्जन ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सलाहकार अली अकबर विलायती है बहरीन के खबरदार क्यों था पेंजे हदन में रहे पेंजे मुस्तकबिल से रांद न खेले ईरान के सख्त फैसलो करते मजबूर न किया वे

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

रात होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है, ये मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।

0: रक से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

0: देखिए पागलखाना 20 से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: अब आप GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पॉलिसी जल्द जोड़ ऐं ज़रई शोबे में एपेक्स फोरम क़ाइम करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठ वज़ारत क़ौमी غذائی تحفظ ऐं ज़रई शोबे में सुधारण बाबति अहम इजलास थियो। वज़ीर आज़म सूबनि जी मुशावरत सां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल्द जोड़ जी हिदायत कई। शहबाज़ शरीफ चयो त ज़रई शोबो जटादार मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करे सघे थो। AI जी मदद सां बि ज़रई शोबे खे बहितर बणाए सघिजे थो।

ईरान ऐं अमरीका जो हिकु ॿिए ते हमला रोकण ऐं कतर में ॻाल्हियूं करण ते इतफ़ाक़ आहे। अमरीकी मीडिया जी दावा अमरीकी मीडिया मूजिबि तेहरान हिकु ॿिए ते हमला रोकण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सुभाणे मामले ते दोहा में सिधी रीति ॻाल्हियूं बि थींदियूं, जंहिंजो महिवर अपना अर्मूस हूंदो। ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुफ़ामती यादाश्त तहत टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं बि जारी आहिनि। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त अमरीका ऐं इसराइल माहिदे जी भजकड़ी करे रहिया आहिनि, जंहिं सबबि खिते में अमन ऐं इस्तेकाम बहाल न थी रहियो आहे। माहिदे ते नेक नियती सां अमल दरामद जा ख़्वाहिशमंद आहियूं। माहिदे जी भजकड़ी ते ॿी धुर ख़िलाफ़ फ़ैसिलाइता क़दम खया वेंदा।

ईरान कतर में मुंजमद कल 12 अरब डॉलर से ईरानी असासन में 6 अरब डॉलर जारी करने मुतालबो कर छो। ईरानी सदर मसूद पेशकियान कतर में मौजूद ईरान के 12 अरब डॉलर में 6 अरब डॉलर जारी थे घुर्जन। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की सलाहकार अली अकबर विलायती है बहरीन के खबरदार क्यों था पैंजी हदन में रहे पैंजे मुस्तकबिल से रांद न खेले ईरान के सख्त फैसलो करते मजबूर न कर वने।

सेनेट जे घरू मामलनि बाबति सब कमेटी जो इजलास बाबति ग़लति ॼाण ॾियण ते कमेटी पारां कावड़ जो इज़हार। FBR अमलदारनि खे इजलास खां ॿाहिरि कढी छॾियो। FBR खे तमाक बाबति टैक्स ते मुकमल ॼाण ॾियण जी हिदायत। कमेटी चेयरमैन सैफुल्ला आबड़ो चयो त टिन खां चइनि आफ़िसरनि मुल्क जो बेड़ो ॿोड़े छॾियो आहे। सेनेटर दलहा महमूद चयो त पंज आफ़िसर कहिड़ा आहिनि। सैफुल्ला आबड़ो वराणियो त हुक्मरान पंज आफ़िसर पंजाब मां पाण सां गॾु खणी आया आहिनि।

सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबत सिंध हाई कोर्ट जे फैसले के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छो। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस पब्लिक कमीशन जी CCA 2024 जे पेपर से समूरो रिकॉर्ड सील करे पेश करने हुकुम दिनो हो।

खैरपुर के कच्चे में कोराई बिरादरी की बिन दुरियन में जेड़ो भजना कतल एक जख्मी खुलो थाने की हद गोठ कोराई में कोराई बिरादरी की बिन दुरियन में मामूली गाल जेड़ो थो फायरिंग में रोशन है करावड़ कोराई मारजी वो मोहम्मद सदीक कोराई जख्मी थो दुरियन में चिकताण वधी वही।

0: छिंदवे पानी कोर्ट खिलाफ आबाद गढ़ सरापा एहतजाज कुंडरी दोदापुरा मीरपुर भटौरे में धरना नबी सर का पानी कोर्ट खिलाफ आबाद गारन जो पैदल मार्च कुंडरी पहुतो आबपाशी ऑफिस अगे मीरपुर भटौरे में आबाद घर ते धरनो हयो पानी कोर्ट खत्म करने मुतालबो हैदराबाद कोट आए कोटड़ी रेलवे पुल बस चीनी लाश डिगी है। सिंधिया मुख
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: GAFM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: मैक्रीनो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शाह,
3: उसी
2: जीए एफएम नेटवर्क।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

अमेरिका सां सिधियन ॻाल्हियुनि जो को बि मनसूबो न आहे। ईरानी नायब परडे॒ही वज़ीर कासिम फरीबाबादी चयो आहे त वायदनि ते अमल दरामद लाइ कतर सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। टेक्निकल टीमनि विच में ॻाल्हियुनि जी हिन वक़्ति तस्दीक नथी करे सघिजे। टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियुनि जो पहिरियों दौर हालतूं ठीक थियण ते ई थी सघे थो। तारीख़ ऐं जगह ते इतफ़ाक़ थी वेंदो। 40 मुल्कनि सां मुशावरत जो सिलसिलो जारी आहे। आपना हुर्मुस बाबति ईरान ऐं अमान जी कमेटी जी बि गॾिजाणी थी। हुर्मुस बाबति मुशावरत कई वई। ईरान कतर में मुंजमद कयल 12 अरब डॉलर जे ईरानी असासनि मां 6 अरब डॉलर जारी करण जो मुतालबो करे छडि॒यो। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान चयो आहे त कतर में मौजूद ईरान जे 12 अरब डॉलर मां 6 अरब डॉलर जारी थियण घुर्जनि। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बेरन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजे हदनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे। ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे। सेनेट जे घरू मामलनि बाबति सब कमेटी जो इजलास। टैक्स चोरी बाबति ग़लति ॼाण ॾियण ते कमेटी पारां कावड़ जो इज़हार। एफबीआर अमलदार खे इजलास खां ॿाहिरि कढी छडि॒यो। एफबीआर खे तमाक बाबति टैक्स ते मुकमल ॼाण ॾियण जी हिदायत। कमेटी चेयरमैन सैफुल आबड़ो चयो आहे त 10 खां 4 आफ़िसरनि मुल्क जो बेड़ो घोड़े छडि॒यो आहे। सेनेटर तलहा महमूद चयो त 5 आफ़िसर कहिड़ा आहिनि। सैफुल आबड़ो विराणियो हुकमरान 5 आफ़िसर पंजाब मां पाण सां गॾु खणी आया आहिनि।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज 91.6 सिंध जो आवाज उधर
1: से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खत्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

अमरीका ईरान में अपना हुर्मुस्तान शुरू थे चिकताण घटण लगी। ईरान की दरख्वास्त सुभाने दोहा में बिन्हीं मुल्क के नुमाइंदन की मुलाकात थन्दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की दावा व्हाइट हाउस ईरान से आला सतह गाल गड टेक्निकल सतह जो गाल भी थन्द स्टीव वुडकॉफ और जेरेड कृष्णर गालियन में शरीक थन्दा। अमरीकी अहदेदार मूजिब बिन्हीं मुल्क जमलदार मुसलसिल रबते में आन। दोहा में अपना हुर्मुस्त समेत अहम मामलों गाल।

अमरीका सां सिधियन ॻाल्हियुनि जो को बि मंसूबो न आहे। ईरानी नायब परडेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त वायदनि ते अमल दरामद लाइ कतर सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। टेक्निकल टीमनि विच में ॻाल्हियुनि जे हिन वक़्तु तस्दीक नथी करे सघिजे। टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियुनि जो पहिरियों दौर हालतूं ठीक थियण ते ई थी सघे थो। तारीख़ ऐं जॻह ते इतफ़ाक़ थी वेंदो। सालिस मुल्कनि सां मुशावरत जो सिलसिलो जारी आहे। आपदा हरमुस बाबति ईरान ऐं अमान जी कमेटी जी बि गॾिजाणी थी। हरमुस बाबति मुशावरत कई वई। ईरान कतर में मुंजमद कयल 12 अरब डॉलर जे ईरानी असासन मां 6 अरब डॉलर जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान चयो आहे त कतर में मौजूद ईरान जे 12 अरब डॉलर मां 6 अरब डॉलर जारी थियण घुर्जनि। ईरान सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त पहिरियों खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजे हदनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे, ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे। वज़ीर आज़म पारां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल्द जोड़ण ऐं ज़रई शोबे में एपेक्स फोरम क़ाइम करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म सदारत हेठ विदारत ते क़ौमी ग़ज़ाई तहफ़ुज़ ऐं ज़रई शोबे में सुधारनि बाबति अहम इजलास थियो। वज़ीर आज़म सूबनि जी मुशावरत सां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल्द जोड़ण जी हिदायत कई। शहबाज़ शरीफ चयो त ज़रई शोबो जटादार माशी तरक़ी में अहम किरदार अदा करे सघे थो। एआई जी मदद सां बि ज़रई शोबे खे बहितर बणाए सघे थो। मोदी पाकिस्तान मथां आबी दहशतगर्दी करण चाहे थो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल चई चुका आहिनि त पाणी बकाउ जो मामिलो आहे, रंड कबूल न कई वेंदी। सुध समाह वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला तारण चयो आहे त सिंध तास माहिदे खे मुअत्तल नथो करे सघे। सिंध तास माहिदे बाबति दुनिया पाकिस्तान जो मौक़िफ़ तस्लीम कयो आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे पाणी तरफ़ वधंदड़ हर हथ काटे छॾींदो, पाणीअ ते धाड़ो बर्दाश्त न कयो वेंदो।

0: हक सच जो आवाज।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, जो मसल के फेंक भी दूंगा ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह की सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एट ब्यूटी प्लान के सप्लीमेंट और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिस फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: DA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: स्लोगन।
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता। और यही बात
1: अभी बुधोपिया।
2: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

अमेरिका ईरान में अपने हरमुस तां शुरू थियल चिकताण घटण लगी। ईरान की दरख्वास्त सुभाणे दोहा में बिन्हीं मुल्क के नुमाइंदन में मुलाकात थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की दावा, व्हाइट हाउस स्टेवर्ट कोफ और जेरेड किर्श को भी मंसूबो न है। ईरानी नायब परडेही वजीर कासिम फरीबाबादी वायदन पौधे अमलदार मुसलसल रब जारी। टेक्निकल टीम विच में गालियन के वक्त

सीखना थी बीमा ये जो पेरियो दौर हालतू ठीक थियण तई थी सके तो तारीख ऐं जगह ते इतफ़ाक़ थी वेंदो। 40 मुल्कनि सां मुशावरत जो सिलसिलो जारी आहे। आपना हरमुज़ बाबति ईरान ऐं अम्मान जी कमेटी जी बि गॾजाणी थी, हरमुज़ बाबति मुशावरत कई वई। ईरान कतर में मुंजमिद कयल 12 अरब डॉलर जी ईरानी असासन मां 6 अरब डॉलर जारी करण जो मुतालबो करे छडि॒यो। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान चयो आहे त कतर में मौजूद ईरान जी 12 डॉलर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बहरीन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजे हदनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे।

मोदी पाकिस्तान मथां अभी दहशतगर्दी करण चाहे तो वज़ीराज़म में फील्ड मार्शल चई चुका आहिनि त पाणी पकाउ जो मामिलो आहे ठंडक कबूल न कई वेंदी। सुध समा वारे फाकी वज़ीर अता तारण चयो आहे त सिंतास मुआदे खे बोतल नथो करे सघजे। सिंतास मुआदे बाबति दुनिया पाकिस्तान जो मौक़िफ़ तस्लीम कयो आहे। वफ़ाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे पाणी तरफ़ वधंदड़ हर हथ काटे छॾींदो, पाणीअ ते धाड़ो बर्दाश्त न कयो वेंदो। सेनेट जे घरू मामलनि बाबति सब कमेटी जे इजलास में कुकिन क्वीन अनमोल और पिंकी जो जिक्र। डीआईजी साउथ कराची असद रज़ा पारां कमेटी खे पिंकी केस बाबति ब्रीफिंग। कमेटी चेयरमैन सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो चयो त पिंकी सिंध में रहे त केस कुझ न थींदो, ईंदड़ साल पिंकी खे सदारती अवार्ड मिली वेंदो। अनमोल पिंकी खे त वज़ीर आज़म खां बि वधीक प्रोटोकॉल डि॒नो पियो वञे, पतो लॻायो वञे त पिंकी जे पोयां केरु आहे।

सिंध में अगवा थे प्रिया कुमारी उज्वला परवीन समेत बेन बारन जिबाजा बिलाय बबरलो में चौथे डीह एहतजाज जारी। प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी तरफा लगायल एहतजाजी कैम्प में इलाके वासी सियासी समाजी ए समाजी अगवाणन की शिरकत। प्रिया कुमारी उज्वला सोलंगी नवीद आशारी सभा कलोड़ो फातिमा तेणो ए बेन बारन की बाजाबी तई एहतजाज जारी रखने ऐलान। सिंध में अगवा थे समूर बारन के बाजब करण मुतालबो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधर
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: जब दिमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर ना रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे एतबार किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: तुम्हें बर्बाद कर देगी।
1: तो अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। देखना
0: मैं ना फिर तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा।

0: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
1: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट लॉस्ट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
0: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।